0: समिति हौ चौदह के में बौधे लोटी पर्दी रो बैंक ने विवरण पी विषय मई खाता खै हमरो
1: खै खै बहु कोई लोटरी भर दिल
2: आई समीज लोटरी पर छाई गुरी
1: बर्दी आ बर्दी लोटरी खाली पर दिन बा शैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर खनै बने खाई विशा खाई मई विश्वास आलन फोन खाले पनि आफै विवरण खाई मई आपिल खबै बने वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज